क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम ND7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूमात के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल

0: मरती है क्यों।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM टू 8 PM, संडे 10 AM टू 8 PM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com.

0: मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
4: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
5: 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
6: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
2: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
1: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें रातों ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
9: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार। Venom,

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
10: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
10: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

उड़ान का इम्तिहान है, सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है, बिखरता है वही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
4: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
4: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
4: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: चाहिए।
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
3: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
3: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: अगर तुम

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
5: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
5: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
5: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप। You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

मलिकूना तू लिखी ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on फजा 97.1 FM and DAB.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक। रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल के अथाह कह रही हूँ, उसे खुश आमदेद कहते हुए वेलकम है जिन समातों को, उन समातों को जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। आपको बताते चले कि डैप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल, और एक फिर खूबसूरत सा पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ फजा गोल्डन कलर में लिखा हुआ या येलो कलर में या पेज कलर में लिखा हुआ आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, जब आप प्ले करेंगे तो ये आवाज ठहरेगी आपकी समात हुई नजर। आपको कहते हुए सब खैर यानी गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था कह रही हूँ से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम है जी उन समातों का, उन अहबाब का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप पे डैप पे मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे हमें, कैसे हमें आप प्ले करेंगे और कैसे आप हमें सुनेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि कुछ ऐसे अहबाब जो लाइव स्ट्रीमिंग पे हमें सुनना चाहते हैं आपसे गुजारिश है कि एड्रेस बार में सिर्फ लिखिए live.radiofaza.co.uk और हम रहेंगे आपके साथ। तो जनाब खूबसूरत सा प्रोग्राम चल रहा है और कुछ ट्रैक्स भी मैंने आपके लिए निकाले हैं। टॉपिक है जनाब आज हमारा सच्चाई की, जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो सच्चाई बेसिकली है क्या। मेरे एक डिस्कशन हुई बड़े एक ज़बरदस्त हमारी नॉटिंघम शहर की बड़ी फेमस बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने नोट किए और मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर किया जाए उसको। बड़ी जनाब ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी है और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे किसी जगह पर ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे मेरे साथ किसी जगह पर थोड़ी सी बदज़ुबानी की है। बदज़ुबानी का मतलब यह है कि कुछ हकाइक ऐसे हैं जो होने चाहिए थे उन्होंने बताए नहीं, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ठीक है वो बड़े हैं हर चीज़ है लेकिन देर इज़ समथिंग रॉन्ग। देखें जहाँ पे आप सच्चे हैं, जहाँ पे आप सच्चाई है, जहाँ पे आप वेट करते हैं, आपके पास इट डजंट मीन कि आपके पास लॉजिक नहीं, आप रिप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन रिप्लाई एवरीथिंग, यू कैन गिव देम अ लॉजिक एज वेल, लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट आती है ना बड़े की वहाँ पे आपको खामोश हो जाना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। और ये बेहतर इसलिए कि आप रिश्ते बचा लेते हैं, आप ऐसा साथ बचा लेते हैं, आप जज्बात बचा लेते हैं और ये बड़े ज़रूरी होते हैं। किसी जगहों पे आप ये देखें कि अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सच्चाई भी आपके पास मौजूद है और आप ये भी कोशिश करें कि सच्चाई के साथ साथ आप उन लोगों को भी अच्छी तरह देखें, उन लोगों को भी अच्छी तरह महसूस करें जो लोग आपके सामने बज़ाहिर तो सच्चे हैं लेकिन उनके पास वो लॉजिक्स नहीं हैं, वो पावर नहीं है जिस पावर को लेके वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो फिर आपको खामोश हो जाना चाहिए। बड़े की रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं, इफ़ गेटिंग अ लॉस, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो फिर ऊपर वाला है ना वो आपको भी तकवीयत देगा, वो आपको भी सपोर्ट करेगा और फिर उस इंसान को भी सपोर्ट करेगा जो बड़ा भाई, जो मेंटोर, जो बड़ा बिजनेसमैन, जो भी हैं उनके साथ वो रहते हुए आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाह रहे हैं और आपके पास हर चीज़ का जवाब लॉजिक के साथ मौजूद है, प्रॉपर मौजूद है, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उन लॉजिक्स का जवाब मत दीजिए। अगर उस वक्त आप सच बोलेंगे तो वो सच आपके रिश्ते लूज़ करेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ कहीं तो फिर मैं एक बात आपको कह देता हूँ, गालिबन किसी बड़े उस्ताद का ये मफहूम है, ये उनकी कॉल का मफहूम है, ये आप सलातो सलाम की हदीस मुबारक है, आई एम नॉट श्योर, अल्लाह की ज़ात का बेशुमार फरमाए, कहते हैं कि अगर दो रिश्तों को जोड़ने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है तो वहाँ पे आपका झूठ बोलना सदका बन जाता है, सच्चाई ताकतवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी उनके दरमियान बहुत बड़ा क्लैश हो चुका है या दो दोस्त हैं वो आपस में नाराज़ हो चुके हैं, आप मीडियोकर हैं बीच में, आप तीसरे दोस्त हैं जो उनको राज़ी कर सकते हैं, तो फिर सामीन सच्चाई एक ऐसा हथियार है आपके पास, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने उस हथियार को ज़रूरत के वक्त आपने बुरे कार लाना है। आपने क्या करना है कि आपने एक दोस्त है उसने फलान दोस्त की बहुत ज़्यादा एक्स वाई जी यार नितिन ने ये किया फॉर एग्जांपल, तो आप अगले बंदे को फॉर एग्जांपल काशिफ है जो आप का दूसरा दोस्त है और आप मीडियोकर हैं बीच में, तो आप उनको जाके कहें कि नहीं यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, नितिन तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा था, नितिन का यार है तो मेरा दोस्त, पुराने वक्तों में हम साथ थे, आजकल किसी वक्त किसी चीज़ से हमें क्लैश हो चुका है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्लैश खत्म हो, लेकिन उसके माइंड में कुछ बातें हैं जो वो समझ रहा है कि सही हैं और मैं समझ रहा हूँ कि मैं सही हूँ, इसलिए ये भी हो जाएंगी, वो ऐसा कह रहा था। जब आप काशिफ के पास जाएँ तो आप नितिन के हवाले से बात करें, आप नितिन के पास जाएँ तो काशिफ के हवाले से बात करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जमीन जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो उनकी जो खलिश है वो ख़त्म हो चुकी होगी, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। यही चीज़ होती है हस्बैंड एंड वाइफ में, यही मियाँ बीवी में होती है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं देखें कि दो मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है मियाँ बीवी के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, शैतान बहुत ज़्यादा, इबलीस बहुत ज़्यादा अपनी अमलियत रखता है, ताकत रखता है, वो ताकत को बड़े सिलसिले से आजमाता है। याद रखिएगा, कहते हैं कि पूरी कायनात में,
पूरी दुनिया में जो इब्लीस का सबसे ताकतवर वार है वो है कि जब वो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान लड़ाई करवाता है, वो सबसे उसका स्ट्रॉन्ग वार होता है, वो सबसे उसका तेज वार होता है और जिसपे वो खुद इन्वॉल्व होता है। वैसे तो हर जगह पे उसके जो चेले हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो काम करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई दिलवाने के लिए शैतान इब्लीस खुद मौजूद होता है और कहता है कि ये काम तुम लोगों से नहीं होगा, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू बाय माय सेल्फ। तो फिर वो क्या करता है कि वो खुद अपने आप को इन्वॉल्व करता है और फिर वो काम करता है जो काम उसके लिए बड़ा ख़ास होता है, यानी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाना। फिर आप अगर बीच में पढ़ते हैं, आप बड़े भाई हैं, आपकी नंद है, आपकी भाभी हैं, आपकी देवर है, व्हाटएवर जो भी रिलेशन है या आपके जेठ हैं, आप फिर बीच में पड़ जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं और फिर बोलें नहीं भाभी तो ऐसा कह रही थी आपके बारे में, और भाभी भाई को बोलें, अपनी भाभी को बोलें भाई ऐसा कह रहे थे आपके बारे में, तो अगर वहाँ पे आप झूठ बोलती या बोलते हैं तो वो झूठ ऐसा होता है जिससे आपको फ़ायदा होगा और अल्लाह की ज़ात इतनी ज़्यादा खुश होगी आपसे। यकीन कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई तो फिर बंदा ना चीज़ आपके पास हाजिर है। तो जनाब ये वो मसाइल हैं, ये वो सिचुएशन हैं, जो मैं इतना बड़ा मुफक्कर तो नहीं हूं, आई एम दैट मच स्कॉलर टाइप पर्सनैलिटी, लेकिन बीइंग ए ब्रॉडकास्टर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हर चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है और वक्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा झूठ जो दो लोगों को आपस में मिला दे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।

तो इसलिए ना मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पे सच्चाई आपके रिश्ते बचाए, वहाँ पे जहाँ पे सच्चाई आपके रिश्ते ना बचाए, वहाँ पे आप सच्चाई को पसे पर्दा कर दें, और जहाँ पे झूठ आपके रिश्ते बचा ले, दो दिलों को आपस में मिला दे, तो वहाँ पे कभी कभी मसलहतन झूठ बोला कीजिए, ताकि इससे रिश्ते बच जाएं, दुनिया बच जाए, और जब ये खूबसूरत लोग आखिरत में जाके आप लोगों का दामन पकड़े बगैर या आपका गरीबान पकड़े बगैर बताएंगे, उनके हाथ पैर अजा सब बोलेंगे कि हाँ ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी बाजी हैं, ये वो मेरी बड़ी भाभी हैं जिन्होंने हमारे रिश्तों को बताया। तो यकीन कीजिए कि हमारा नॉटिंघम शहर बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ का मालिक है, बहुत ही प्यारे दिलों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और फिर वो लोग हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। इसलिए ना गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ना खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके साथ साथ है, ना पाकिस्तान की 79th इंडिपेंडेंस डे के हवाले से इस बार आप सेलिब्रेट कर सकते नॉटिंघम शहर में नाम एक्सेलसियर नवाब में। सर मारवी आ रही हैं जनाब लाइव इन नॉटिंघम आपके साथ होंगी, जबरदस्त पाकिस्तान की सूफी सिंगर हैं। डेट याद रखिएगा 14th ऑफ अगस्त शाम 6 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और आपको बताते चलें कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है कि 07802988615 या फिर 07715299779। बिल्कुल आप जेड के एमेंट्स एंड रेडियो फजा 97.1 FM मीडिया पार्टनर हैं। VIP टिकट्स ना आप मीट एंड ग्रीट सना मारवी के साथ बैठ सकते हैं, ले सकते हैं, बुक कीजिए। स्टैंडर्ड और चिल्ड्रन टिकट्स भी अवेलेबल है अप टू 12, उससे नीचे जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो जनाब आज ही जाइए excelsiernawab.co.uk की वेबसाइट पे बारकोड पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और उसके बाद शामिल हो जाइए इस खूबसूरत सी यादगार शाम में जो सिर्फ होगी पाकिस्तान के नाम सनम मारवी के साथ। लें जी, बात हम सनम मारवी की कर रहे हैं, तो खूबसूरत सा ट्रैक मेरे पास मौजूद है साईं जहूर और सनम मारवी की आवाज में। जनाब ये ट्रैक है बेसिकली कुक स्टूडियो का, और लगी भी क्या खूबसूरत सा ये ट्रैक है। बिल्कुल नाम लगी बिना आप जानेंगे, आप सुनेंगे साईं जहूर और सनम मारवी की खूबसूरत सी आवाज़। स्टे ट्यून्ड इन फजा 97.1 FM, एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पार रहती है आपसे मेरी मुलाकात, और जब तक आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं एंजॉय कीजिए सनम मारवी की खूबसूरत सी आवाज़। एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम पे लाइव स्टोरी से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था कह रहा हूं से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम जी। तो कैसा लगा सना मारवी की आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक? उम्मीद है आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, मुझे तो डेफिनेटली पसंद आया और अगला ट्रैक भी मैं लगा के रखूँगा। मैं लचपालां दे लड़ लग गए जी बिल्कुल, लेकिन अभी होगी हमारी कोई गपशप एक बड़े प्यारे से हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने इस वक्त ये फरमाइश की, और ये जनाब लिसनर्स भी हमारे बड़े ज़बरदस्त हमारे पाजी हैं, कैब ही हैं, बेसिकली कैब चला रहे हो इस वक्त जनाब, ये आ रहे हैं एयरपोर्ट से और ऐप पे हमें सुने। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन हमारे साथ दुबई से, आज के आप साल दुबई से हमें ट्यून कर चुके हैं, और बाकी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त नॉटिंघम शहर से हमें ट्यून किए हुए हैं, उनकी मोहब्बतें उनकी चाहतें हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नहीं जनाब, कल एक बड़े प्यारे से हमारे लिसनर्स हैं, उन्होंने मैसेज किया कि सबक अच्छा याद किया हुआ है। तब जब मैं माइक पे बैठता हूँ तो मुझे ये बात याद आ जाती है उनकी कि सबक अच्छा याद है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, सबक याद करना पड़ता है। तो उन्होंने जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात पूछी थी जनाब, ये हैं नीर कैसी हैं आप? व्हाट अ यूनिक नेम, थैंक यू वेरी मच जनाब। बिल्कुल आप आरजे बनना चाहते हैं डेफिनेटली, तो आज ही अपनी सीवी आप कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए 0115710097 ये नंबर है जिस पे आपने भेजा, अपनी सीवी सेंड कीजिए। और डेफिनेटली ना आप भी आरजे बन सकते हैं, बल्कि कोई भी आरजे बन सकते हैं, जिसने भी आरजे बनना है, जिसने भी ब्रॉडकास्टर बनना है, रेडियो के फील्ड को ज्वाइन करना है 97.1 एफएम के हमारे जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करना है ऑर्गेनाइज करने में, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद शामिल हो जाइए हमारे साथ इस फ़ज़ा टीम में, ताकि आप भी नॉटिंघम शहर की जितनी भी सिविलाइजेशन है उसमें बढ़ चढ़ के काम कर सकें, लोगों के साथ मेल जोल रख सकें, बिजनेस कम्यूनिटीज़ के साथ मिलें, और उसके बाद एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा कम्यूनिटी जो हम नॉटिंघम शहर के हवाले से देखते हैं, हमारी साउथ एशियन कम्यूनिटी है, उस कम्यूनिटी में अपना किरदार अदा कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्योंकि हम अक्सर उस एरा में रह रहे हैं जिस एरा में हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को मज़ीद डिवेलप करने की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को मज़ीद निखारने की, हमें ज़रूरत है अपनी आने वाली नस्लों को मज़ीद संवारने की। तो ये सारी जो समर्था है और ये सारी जितने भी हमारे पालक हैं, जितने ले पालक हैं, बच्चे हैं, अभी काम से हैं, वो जितने भी मौजूद हैं उनसे उनकी बतदरीज नशोनुमा के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब ये चीज़ हम लेके चलते हैं किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी मीडिया हब के थ्रू, जैसे 97.1 एफएम इज़ मीडिया हब बेसिकली, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आगे पॉडकास्ट सेशन है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं, आप बड़े बड़े स्टार्स को मिलते हैं, उसके बाद इवेंट्स होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्टेट यूनिट 97.1 एफएम एंजॉय कीजिए, खूबसूरत से ट्रैक वो भी साथ साथ रहेंगे। टॉपिक था जनाब आज का हमारा सच्चाई, और एक बड़ी ज़बरदस्त सी कोट जो मैंने आपके लिए रखी थी वो इसलिए बताता चलूँ आपको कि बड़े एक फेमस ऑथर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि जो सच्चाई का रास्ता है वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, या सच्चाई का रास्ता अंधेर कुन क्यों होता है? तो कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले अगर अकेले रह जाएं तो मायूस मत हो, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बिल्कुल जनाब, वो सूरज अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिसेस हैं लाइफ में। डजंट मीन कि लाइफ में कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, कभी भी ऐसा नहीं है, हर इंसान गलती का पुतला है, अना का खोजी है। हम छोटी छोटी बातों पे मसलहतन झूठ बोलना ऐसा समझते हैं जैसे हमारा हक है, और आजकल के दौर में जब कोई थोड़ा सा बंदा ना किसी को ये कह लेते हैं ना कि यार आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोली दे दी किसी को, या हम ये कहते हैं कि यार आपने क्या ज़बरदस्त तरीके से डॉच दिया किसी को, इट डजंट मीन कि यू आर अ चैम्पियन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी बहुत बड़े ओहदे पे फायज हो गए, हमेशा यही रहता है कि आपने जब ये तमाम चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर ली हैं तो फिर आपकी खसलत बन जाएगी, आपको मुआशरे में, आपको सिविल सोसाइटी में एक नाम दे दिया जाएगा गोलीबाज, आपको एक नाम दे दिया जाएगा कि यार बंदा ये डॉजी है, बड़ा हमेशा डॉज करता है। और जिस मुआशरे में हम परवान चढ़े हैं, हमारे जो नॉटिंघम शायर का, इंग्लैंड का, यूके का जो माहौल है, इसमें जो बच्चे हमारे परवान चढ़ते हैं, बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि इस मुआशरे में बेसिकली उन्होंने झूठ बोलना सीखा ही नहीं है। ये वो इकदार हैं, ये वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है जो आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने आज से 1400 साल या 1500 साल पहले मदीनातुल मनवरा की जब बुनियाद रखी गई थी तो उस पर ये रखी थी, और लोगों को ये बताया था कि भाई हाँ मैं हूँ, मैंने पहले नबूवत का ऐलान बाद में किया, बताया पहले हो के सच्चाई ये होती है। कुर्बान जाए कुफारे मक्का, वो ये कहते थे कि अगर आप सलातुस्सलाम की ज़ात ये कहे ना कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो आ रहा है और मक्का पे हमला करेगा, तो यकीन जाने के दो राय नहीं होंगी। उसमें सच्चाई का लेवल ये था, लेकिन नबी होने से इनकार करते थे। देखिए बात पहले है किरदार की। 40 साल तक आप सलातुस्सलाम की जात ने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि मैं नबी हूँ, हालांकि रब्बी हबली उम्मती, जो बच्चा माँ के पेट से पैदा हो के ये कह रहा है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, उसको नहीं पता मैं नबी हूँ। 40 साल लगे वो करैक्टर लेके आने में, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। 110% लोगों को बताया कि इंसान ऐसे होते हैं, ये है वो नूरुल बशर जिसकी अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में कस्में खाता है। लेकिन कुरान पाक में अगर आप देखें तो हर जगह पे हमें किसी जगह पे भी आप सलातुस्सलाम का उम्मती कह के मुखातिब नहीं किया गया, या बनी इसराइल या फिर या अय्युहल मोमिनीन, या ईमान वाले या बनी इसराइल, दो लकब हमारे पास मौजूद हैं, दो सिचुएशंस हमारे पास मौजूद हैं, इन्हीं दो सिचुएशंस में, इन्हीं दो अलकाब पे हमें बुलाया जा रहा है। तो सामीन अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद रहती हैं, अगर हम फिर भी झूठ बोलते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनते, तो इट्स मीन की खराबी हमारे दरमियान मौजूद है, हमने उसको ख़त्म करना है। लेकिन सामीन गपशप हमारे साथ साथ चलती रही कि अगला जो मेरा चंक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो होता है कि तुम एक गोरख जिंदा हो, आपका लजपाला के
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉल स्ट्रीट नॉटिंघम ND7680 on Sunday 2nd August 2026 from 10 AM to 2 PM। مزید معلومات کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ pakistanforum.co.uk to book an appointment please call 07802988615 only a limited number of slots available।
3: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
4: What happened? You look very happy.
5: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
4: Congratulations. That was very quick.
5: I was very lucky. I used the local visa experts.
4: Who helped you with the application?
5: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
4: Where is AMH Solicitors based?
5: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
4: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
5: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
6: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए जनाब खूबसूरत सा प्रोग्राम चल रहा है और सच्चाई पे हम बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छी हमारी डिबेट भी चल रही थी, गपशप भी चल रही थी और इस वक्त सिचुएशन है कि वो ट्रैक प्ले किया जाए जिसको हमेशा आप सुनना चाहते हैं। जनाब तुम एक गोरख दंदा हो, ये खूबसूरत सा ट्रैक रहेगा मेरे और आपके साथ, इंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। सच्चाई के हवाले से टॉपिक है ट्रैक के उस पार, ये कवाली जब खत्म होगी उस्ताद नुसरत अली खान की तो

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

सो डियर लिसनर्स, इंतजार किस बात का है? 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर यानी रेडियो फजा 97.1 FM का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। ये वो नंबर है जिसके जरिए से आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, आप हमें अपनी दास्तान सुना सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस चाहिए या आप की ज़िंदगी में लाइफ में कोई ना कोई कश्मकश चल रही है सो उस हवाले से भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको एक अच्छा पीस ऑफ एडवाइस मिले और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पसंदीदा टॉपिक हम अपने शो यानी कि टीवा डायलॉग में शामिल करें सो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। वेल, हर रोज़ यही कोशिश की जाती है कि हम अपने शो में वो सभी चीज़ें शामिल करें जो हमारे सभी लिसनर्स सुनना चाहते हैं। सो इस हवाले से अगर आप कुछ भी सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई कोई चीज़ मैं बाकी सभी लिसनर से शेयर करूं सो सिंपली आपको करना ये होगा कि आपको जाना होगा इस नंबर पे। इस नंबर पे जाके आपको अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है या फिर कुछ आपको बॉदर कर रहा है सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी क्यूरी को दूर किया जाए और आपको अच्छी अच्छी सी मोटिवेटिंग एडवाइस दी जाए। सो लिसनर, साथ ही बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप हमारी फैमिली रेडियो फजा 97.1 FM का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में आने वाला है। सो रेडियो फजा से रिलेटेड जितनी भी आपको मालूमात चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू। हमारे आने वाले तमाम तर न्यू इवेंट्स की डिटेल भी इसी वेबसाइट पर मौजूद है और आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को भी इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपली आपको जाना होगा गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन्स पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो एक एक करके मैंने सभी आपसे शेयर कर दिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें किस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक अपने इस नए दिन का आगाज कर चुके होंगे। अभी तक आपने इस नए दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस नई सुबह का आगाज रेडियो फजा 97.1 FM के साथ, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं अब से लेके ठीक 2 घंटे तक साथ साथ। सो खूब सारी गपशप होगी, हर तरह की डिस्कशन होगी, वो सभी बातें जो आप सुनना चाहते हैं और वो सभी बातें जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो लिसनर्स, अगर आप अब उठ चुके हैं सो फौरी तौर पर सुस्ती और काहली को छोड़ दीजिए और एक नए एनर्जेटिक दिन का आगाज कीजिए, क्योंकि सुबह के वक्त तो इंसान के माइंड में ये सब थॉट्स आ ही रही होती हैं कि क्यों ना वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए और मज़ीद
थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन आराम करने से ज़िंदगी नहीं गुजरती। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप बिस्तर को छोड़ें, घर से बाहर निकलें और अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, इन सब जगह की तरफ रवाना हों। अब से आप बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की, यानी कि वो सभी लिसनर जो इस वक्त ड्राइव कर रही हैं, ड्राइव करते करते हमें ट्यून कर रही हैं। सो सबसे पहले तो बी केयरफुल वाइल, जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों, सो जस्ट फोकस ऑन योर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों, सो कोशिश किया करें कि इधर उधर आगे पीछे की जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं उन सभी को साइड पे कर दें। वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफर या फिर आपकी डेस्टिनेशन बन जाए मजीद खूबसूरत, सो इस सफर को खूबसूरत बनाया जा सकता है किस तरह से, हमें ट्यून करके। सो आप सभी लिसनर्स जो कि ड्राइव कर रहे हैं, आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो एक एक करके मैंने सभी आपसे शेयर कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सो लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज का ये खूबसूरत सा दिन। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है फ्राइडे। वेल, फ्राइडे को एसोसिएट किया जाता है वीक का एक ऐसा दिन जो कि एशियन कम्युनिटी के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए, एक बहुत ही स्पेशल दिन समझा जाता है। वीक में बहुत सारे दिन होते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए फ्राइडे इज़ अ प्रिकॉशियस डे, क्योंकि फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ आप पूरे हफ्ते की काम काज, जितनी भी हेक्टिक रूटीन होती है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देते हैं और इस चीज़ को रिमेम्बर करते हैं कि आया आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप क्यों आए हैं और आप इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं। वेल लिसनर्स, क्या ये सवाल तो हम सभी के माइंड में आता है कि अच्छा, अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। सो वेल, फ्राइडे इसी चीज़ से एसोसिएट किया जाता है कि फ्राइडे हमें हमारे मकसद के करीब लेकर आता है, यानी हमें ये रिमेम्बर करवाता है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद बेसिकली है प्रे करना, गॉड की इबादत करना, अच्छे अच्छे काम करना और अपनी ज़िंदगी को इबादत में मशगूल करना। सो जब मंडे से लेकर थर्सडे तक हम अपने डेली ऑफिस की बिजी रूटीन में बिजी हो जाते हैं, सो हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। और फ्राइडे आकर हमें ये रिमाइंडर देता है कि वापस से अपनी उस वे की तरफ, उस रास्ते की तरफ आ जाओ जिसके लिए आप सभी इस दुनिया में आए हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फ्राइडे इस तरह से भी एक गुड लक डे समझा जाता है, क्योंकि फ्राइडे बाकायदा तौर पर ऐलान करता है कि फाइनली द वीकेंड इज हियर। जिस वीकेंड का आप थ्रू आउट द होल वीक इंतज़ार करते हैं, फाइनली वो आ चुका है। बहुत सारे लोग फ्राइडे को ये भी सोचकर ऑफिस जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज का दिन चले जाते हैं क्योंकि अब आने वाला है वीकेंड, और वीकेंड को आराम करने का मौका मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और मिलेगा बहुत सारा फ्रीडम। सॉरी लिसनर्स, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो आपको महसूस हो रहा होगा कि आवाज़ में काफ़ी हद तक तब्दीली है, सो इसको इग्नोर कीजिएगा।

वैसे मौसम तो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मेरे गले में हराश आ गई है। वेल, अक्सर अवकात ऐसा हो जाता है, सो इस वजह से आई फील लाइक आज मुझे खुद भी अपनी आवाज़ थोड़ी सी अनोइंग लग रही है। सो वेल लिसनर्स, इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को, और अगर आपको ज़्यादा अनोइंग लगे तो साथ ही मुझे बता दीजिएगा। सोचे लिसनर्स, हमेशा की तरह जिस तरह से हम आगाज़ करते हैं एक नए खूबसूरत से दिन का एक हेल्दी मील के साथ, ठीक उसी तरह से शो का टीवा डायलॉग का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से कलाम के साथ। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात, एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।

0: Well, listeners, अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, so let's take a short break and we will be right back after a very short break.
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरचे सैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे।

ज़्यादा अच्छी है कि आप खुद बहुत ही उस कलाम में डूब जाते हैं। सो कुछ इसी तरह के तासुरात होते हैं मेरे भी जब कभी मैं आबदा परवीन साहिबा का कोई भी कलाम सुनती हूँ, क्योंकि अगर हम सूफीज़म की बात करें तो वन ऑफ़ द बेस्ट सिंगर्स माना जाता है आबदा परवीन साहिबा को, क्योंकि इनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा जादू है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इन्हें पूरे गौर से ध्यान से सुनता है।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? अब जरा आगे बढ़ते हैं शो के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई बड़ा स्टेप्स लेने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। सो बेसिकली देर आर फ्यू थिंग्स जो कि हम सभी के माइंड में आती हैं, और वो कुछ यूँ होती हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या मैं ये कर पाऊँगा, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सो बेसिकली इसी डर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं लेस ब्राउन का एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेटिंग सा कोट है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने शो में शामिल करें। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग अवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग अवर फियर्स। इस एक सेंटेंस में कितनी गहरी बात छुपी हुई है ये अगर आप फील करें देन ही आपको पता चलेगा। सो हम में से अक्सर लोग अपने ख्वाब इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने डर के साथ जी रहे होते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का बंदा नहीं बल्कि हमारा अपना डर होता है। डर फेल होने का, डर लोगों से ताने सुनने का, मुकाबला ना कर पाने का और दुनिया वालों से पीछे रह जाने का। मैं गुजार देता हूँ लेकिन उन ख्वाब को वक्त नहीं देता जो हमारी रूह को ज़िंदा रखते हैं। और कुछ इसी तरह से हम बस बेरंग सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हर दिन को आगे बढ़ा रहे होते हैं और इस डर के साथ कि हमें कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हम उसको अच्छे से ना कर पाएं और फिर हमें एम्बैरेसमेंट हो। जब आप अपने डर को अपनी सोच पर हावी होने देते हैं तो आप अपनी असली शख्सियत को तब्दील कर देते हैं। सो बेसिकली आप अपनी सलाहियतों पर शक करने लगते हैं। सो व्हेन यू डाउट ऑन योरसेल्फ तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते। आज ही अपने डर की दीवार को तोड़िए, ये सोचना छोड़ दें कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, बल्कि ये सोचिए कि अगर मैं उस दिन आगे बढ़ जाता या फिर ये स्टेप ले लेता तो आज जिंदगी किस कदर मुख्तलिफ होगी। सो टेक दैट रिस्क बिकॉज योर ड्रीम डिजर्व अ चांस। वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट मोटिवेटिंग सा कोट, यानी कि कोट ये कहता है कि अपने फेलियर से बिल्कुल भी मत डरिए क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अगर जीत है कहीं ना कहीं तो उसी जगह उसी पॉइंट पर हार भी मौजूद है। सो जो लोग इस डर से आगे नहीं बढ़ते वो ज़िंदगी में नाकाम रह जाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं। सो हमने क्या करना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना। सो 01157100971 है हमारा नंबर। सो इस हवाले से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का सोच रहे हैं एंड देन आपको ऐसा लगता है कि शायद आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सो आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं। वेल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँ और साथ ही साथ ये रियलाइज़ करवाऊँ कि किस तरह से आप उस काम को मज़ीद खूबसूरती से कर सकते हैं।

में जहाँ हम फेलियर की बात कर रहे थे, तो इसी के साथ ही मुझे अपने एक लाइफ का किस्सा याद आ गया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी लिसनर्स के साथ इसको शेयर किया जाए। सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग थिंकिंग कि अच्छा मुझे रेडियो में आना चाहिए, सो उस टाइम पीरियड पे मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं रेडियो में आ सकती हूँ। वेल, आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क और आई कैन नॉट हैंडल दिस। सो मैं एक पॉइंट पे ऐसा सोचना शुरू हो गई थी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट देन आई डोंट गिव अप। सो उसी के चलते आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते नाउ थिंग्स बिकम्स वेरी ईजी और अब ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी चल रही है। लेकिन अगर उस वक्त मैं डर के ये एक स्टेप ना उठाती, सो आज आप और मैं यूँ इस तरह से ना होते। सो इसी तरह से आप ये एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं कि जब तक आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। और मज़ीद आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए ज़रूरत होती है कि आप कभी भी डरें नहीं, क्योंकि जो लोग डर जाते हैं वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान को रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है। वेल लिसनर्स, इसी अच्छी सी मोटिवेटिंग सी बात के साथ ज़रा शो में शामिल करते हैं कोई खूबसूरत सा कलाम, कलाम ऐसा जो दिल को छू ले और आपको रूहानी ताजगी दे। सो देखते हैं कि फिल वक्त हमारे पास कौन सा कलाम है। वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा कलाम शो में शामिल किया जाए तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि हम आपके पसंदीदा कलाम को ज़रूर शो में शामिल करें।

चलिए लिसनर्स, मुझे मिल गया है एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। तो जी सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। कलाम के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात। स्टे ट्यून्ड विद अस।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? वैसे जब भी कभी आप जिंदगी में थोड़ा सा ना उम्मीद हो तो इस खूबसूरत से कलाम को सुन लिया करें, क्योंकि ये भी इटसेल्फ बहुत मोटिवेशन देता है। सो डियर लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद का कमर्शियल ब्रेक का, यानी आपके और मेरे बीच हाइल होने जा रही है ये ब्रेक। सो आगे बढ़ते हैं इस ब्रेक की जानेब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आर्चेज एंड फातिमा, और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। अब चलते हैं हमारे दूसरे कोट की जानिब। ये उन सभी लिसनर्स के लिए है जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है और वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। सो आवर सेकंड कोट सेज, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। वेल लिसनर्स, क्या बात है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम रातों रात कामयाबी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हम काम शुरू करें और कल हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन

लिसनर्स, असली कामयाबी स्पीड का नाम नहीं है बल्कि असली कामयाबी तो कंसिस्टेंसी का नाम है। सो छोटा सा कदम जो आप रोज़ाना अपने गोल्स की तरफ उठाते हैं वो बिल्कुल ना चलने से हज़ार गुना बेहतर है। एक कतरे कतरे से ही समुंदर बनता है, और अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन लाखों लोगों से आगे जा सकते हैं जो सिर्फ बैठ कर बातें बनाती रहती हैं। वैसे आप सभी ने ये चीज़ भी नोट की होगी कि जब कभी हम माउंटेन्स पर चलते हैं तो हमारी स्पीड हमेशा आहिस्ता ही होती है, लेकिन जो शख्स बिना रुके चलता रहता है आखिर वो ही चोटी यानी कि उसकी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सो डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन एल्स चैप्टर 20। अपनी स्पीड से चलते रहें, बस रुकिएगा मत। सो, अगर आप रुकेंगे नहीं तो देर इज़ अ टाइम जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सो, कभी भी इस चीज़ से आपने ना उम्मीद नहीं होना कि आपकी स्पीड स्लो है या आप वो चीज़ जल्दी अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आई फील लाइक हर एक इंसान का काम करने का डिफरेंट तरीका होता है, हर एक इंसान अपने डिफरेंट जाविये से काम करता है। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर वर्क एंड द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट हियर। तो डियर लिसनर्स, आज के हमारे इस सेगमेंट से जो सुनहरी बातें हम सभी ने सीखी हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि डर के आगे जीत है। अपने ख्वाबों को डर के सहारे मत छोड़िए, बल्कि उसे साइड पर करिए, फेलियर को साइड पर रखिए एंड देन फोकस करिए। और आज हमने जो दूसरी चीज़ सीखी है वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की। चाहे स्लो चलें लेकिन बस चलते रहें। स्टॉप होने का ऑप्शन आपकी डिक्शनरी में कभी भी नहीं होना चाहिए। सो, मेरा यकीन है कि आपके अंदर वो सब कुछ होता है जो आपको कामयाब बनाने के लिए मदद देता है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और जो ये लोग समझते हैं ना कि अपने आप को दूसरों से कम तर या फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ की टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस, सो मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगी कि काम काज दुनिया का हिस्सा है। आपको डेली बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत से छोड़ने पड़ेंगे। सो, किसी भी चीज़ को खुद पर हावी कभी भी मत होने दें। सो, इसे मज़ीद और उम्मीद के साथ हमारा ये सेगमेंट हुआ जाता है ख़त्म। सो, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानेब। जैसा कि आज फ्राइडे, तो फ्राइडे के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपनी एक ऐसी रूटीन बना सकते हैं कि जिससे आपका और आपके गॉड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो, हमेशा की तरह हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि किस तरह से हम अच्छी गाड़ी अचीव कर लें, अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लें, या फिर हमारी फैमिली को एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाए। सो, ये वो सभी चीज़ें हैं, ये वो सभी सक्सेस है जो कि हमें इस दुनिया में चाहिए होती है, और ये हमारी इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। वेल लिसनर्स, क्या आप सभी ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी उस दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं? वो हैं आपका कनेक्शन, यानी कि द वे यू कनेक्ट टू योर गॉड इज़ द वे जिससे आप कामयाब हो सकते हैं उस ज़िंदगी में, उस दुनिया में। सो, आज से हम खुद के साथ ये एक अहद करेंगे कि हमने अपना जो कनेक्शन हमारे गॉड के साथ, जो कि थोड़ा सा वीक हो चुका है समहाउ, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। सो, आज जैसा कि है फ्राइडे, जुमातुल मुबारक, द बेस्ट डे इन अ वीक फॉर ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी। सो, आज के दिन हम ये अहद करेंगे कि हम अपने वक्त में से एक दो घंटे अलग से साइड पे कर लेंगे, और इस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, ढेर सारी इबादत, साथ ही साथ अपने परवरदिगार से रुजू होके गुफ्तगु। सो, आपका कनेक्शन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप गॉड को एज अ फ्रेंड कंसीडर करें और उनसे अपने दिल की सभी बातें करें। जो तमाम तो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हैं, वो सब डिस्कस करें एंड यू विल सी कि आपकी वो तमाम तो चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वेल,
लिसनर, जहां हम बात कर रहे हैं अच्छे अच्छे कामों की, सो अच्छे कामों की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होती है। सो आज के दिन का जो आप सभी का स्टेप है वो ये है कि आपने आज किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करनी है। सो अगर आपको अपने आसपास कम्युनिटी में कोई ऐसा दिखता है, आपके ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, अब हेल्प डिफरेंट तरह से होती है। अगर आप किसी को ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, सो इट्स लाइक अ बेस्ट हेल्प। इसके अलावा फाइनेंशली और इमोशनली और मॉरल सपोर्ट, ये वो तमाम तरह की हेल्प हैं जो आप किसी की भी कर सकते हैं। सो आज अहद करिए कि आज आप किसी भी एक इंसान की दिल से हेल्प करेंगे एंड यू विल सी कि आपको कितना अच्छा फील होगा। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे तो आपका जो गॉड का कनेक्शन है वो भी बिल्ड हो जाएगा। सो जैसे कि हमने आज सेकंड कोर्ट में भी बात ये की थी कि किस तरह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इसी तरह से कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें। सो इसी तरह से जब अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसमें भी हमने यही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। वेल लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शो में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा कलाम। ये कलाम हमारी एक लिसनर की रिकमेंडेशन है। सो उनका कहना ये है कि उनको ये कलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो जैसे कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि शो में वो सभी कलाम शामिल किया जाए जो कि आप सभी को पसंद हो, आप उनको सुनना चाहते हों, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर हम स्टार्ट करेंगे द स्पाइस किचन को।

वेलकम बैक लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम। सॉरी, स्टार्ट करते हैं आज का द स्पाइस किचन। और हमेशा की तरह, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर दिन हम बनाते हैं कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ हटके। सो आज भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, सभी डिवास के लिए कुछ डिफरेंट तरह की फ्यूजनल सी रेसिपी। एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सो डियर लिसनर, जैसा कि हमेशा फ्राइडे को एसोसिएट किया जाता है कि फ्राइडे इज द डे ऑफ चावल। सो बहुत सारी एशियन कम्युनिटीज हैं कि जहाँ फ्राइडे को हमेशा चावल ही खाए जाते हैं। अब वो चावल डिफरेंट तरह के होते हैं, सिंपल पुलाव हो सकता है, या हो सकता है बिरयानी, वेजिटेबल राइस, या फिर एग फ्राइड राइस। सो हमने हर तरह के राइस बनाने की रेसिपी तो सीख ही ली है ऑलमोस्ट। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड आई फील लाइक कि बहुत कम लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको मौका मिले कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई करने का और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का, खाना खाने का। वेल लिसनर्स, मुझे पर्सनली कुकिंग का बहुत शौक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब कभी मेरे पास बहुत सारा वक्त होता है तो तब मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जहाँ से कि हम सब यहाँ यूके में, सो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फील होता है कि आपको वो ट्रेडिशनल टेस्ट चाहिए खानों में, और साथ ही साथ आपका दिल करता है कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंट टेस्ट हो, थोड़ा डिफरेंट फ्यूजन हो, यानी कि कुछ देसी हो, कुछ कॉन्टिनेंटल हो। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली बेसिस पर आपसे रेसिपीज शेयर करती हूँ। सो कल हमने बनाया था हॉट पॉट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमीएस्ट बना था। और आप सभी में से कुछ लिसनर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने उसको ट्राई किया और उनको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो वेल लिसनर्स, इसी तरह की मज़े की रिकमेंडेशंस मुझे देते रहा करें और बताते रहा करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज पसंद हैं, ताकि मैं उन्हीं को शो का हिस्सा बनाऊं। सो जी माय लवली डिवास, जल्दी से आप रेडी हो जाइए। अगर कोई और काम कर रही हैं सो 2 से 3 मिनट के लिए उसको कर दें साइड पे, और कॉपी पेंसिल निकाल लें और नोटबुक तैयार कर लें। सो अब मैं शेयर करती हूँ आपसे आज का मेन कोर्स। सो आज हम बनाएंगे, जैसा कि फ्राइडे है सो फ्राइडे स्पेशल, शाही मटन बिरयानी। सो शाही मटन बिरयानी का ख्याल इसलिए मेरे माइंड में आया क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा चिकन बिरयानी तो ट्राई की हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसा कि लोग मटन बिरयानी ट्राई करें। पता नहीं क्यों, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनती है, और जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो अब आपको अता चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ, तो ये वाकई ही बहुत अच्छी रेसिपी है।

सो लिसनर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए मटन 1 kg। ठीक है, अब आपने मटन ले लेना है, अच्छे से उसको वॉश कर लेना है एंड देन उसको अच्छे से मैयर करके रख देना है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है योगर्ट 1.5 कप, जिसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि उसमें कोई भी फिटकरी ना बने और होता है ना कि जो वाटरी कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छे से क्रीमी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाए। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज जिंजर गार्लिक पेस्ट 2.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर बात की जाए टर्मेरिक पाउडर की सो 1.5 टीस्पून। हमेशा कोशिश किया करें कि रेसिपी में आप टर्मेरिक को कम रखा करें, क्योंकि हल्दी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये भी टेस्ट को काफ़ी हद तक बिगाड़ देती है। सो मेक श्योर कि आपकी हल्दी बहुत कम हो, बहुत बैलेंस हो। अब बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की। सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फ्राइड अनियंस 1.5 कप, मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स, सिंपली पुदीना एंड धनिया 1.5 कप, ग्रीन चिलीज 4 से 5 अदद, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट हसब ज़रूरत हसब जायका और लास्टली कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कुकिंग ऑयल में बनाते हैं या फिर आप बासमती घी यूज़ करते हैं। सो वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको हमेशा बिरयानी कुकिंग ऑयल में बनानी चाहिए, क्योंकि घी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। सो अच्छा हो सकता है कि अगर आप ये बिरयानी खाएं तो आपको गले की हराश आ जाए। लिसनर्स, ये वो सभी इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे हम अपने मटन को अच्छे से कुक कर लेंगे, ग्रेवी बना लेंगे। अब ज़रा चावलों की जाने बढ़ते हैं। सो बॉइलिंग राइस के लिए हमें चाहिए बासमती चावल 1 kg, जिनको आपने 30-40 मिनट्स के लिए अच्छे से भिगो के रखना है। होल स्पाइसेस में खड़े मसाले 2 तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक, और नमक आप 3-4 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके चावल हैं 1 kg, और लास्टली मिंट लीव्स जो कि कुछ अदद हमें चाहिए। सो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम इस्तेमाल करके चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब ज़रा लेयरिंग बात करते हैं। सो हमें चाहिए फूड कलर येलो कलर 1 टेबलस्पून, क्यूरा वाटर 1 टीस्पून, देसी घी 2 टेबलस्पून। सो ये थे वो सब इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा रेसिपी की जानिब, बट ये क्या अभी आ गई है एक अदद कमर्शियल ब्रेक। सो पहले जाना होगा इस ब्रेक की जानिब। सो चलते हैं, बढ़ते हैं इस ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर एंड देन वी विल कॉन्टिन्यू अवर रेसिपी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यार। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM एंड डैब। वेल लिसनर, जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किए थे सभी इंग्रेडिएंट्स, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें दरकार हैं बनाने के लिए मज़ेदार सी शाही मटन बिरयानी। सो लिसनर्स, अब बारी आती है कि हम उन सभी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाएं।

लिसनर्स, रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और मज़ेदार से इस रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा शो में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा कलाम, कलाम ऐसा जो दिल को छू ले और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर ये खूबसूरत कलाम किस सिंगर ने गाया है। सो हदीका क्यानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। सो आइए मिलकर सुनते हैं इनका ये खूबसूरत सा कलाम एंड देन फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी।

सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज मैरिनेट करेंगे हम अपने बटर को, सॉरी मटन को. तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, ठीक है. बर्तन में हम अपने मटन को ऐड कर देंगे, ठीक है. साथ ही साथ शामिल करेंगे दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और साथ ही साथ तली हुई प्याज, पुदीना और हरी मिर्च. ये सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको लिखवाए थे कि मैरिनेशन में इस्तेमाल होंगे, हमने शामिल कर लिए. अब हम ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और नमक. अब हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है. और कम से कम 2 घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट करके रख देना है. याद रखिएगा कि जब भी आप कभी भी बिरयानी बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ तो मैरिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन करके रखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनती है. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हो और जो मीट है बहुत ज़्यादा टेंडर हो, सो यू हैव टू गिव टाइम टू द मैरिनेशन. सो हम क्या करेंगे, बस अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे और अब हम अपना स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. अच्छा, इस स्टेप में हम करेंगे कि एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है. उसमें हम गर्म कर लेंगे कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ शामिल करेंगे उसमें मैरिनेटेड मटन. जैसे ही फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे तो 8 से 10 मिनट के लिए से भून लेंगे. फिर 2 कप पानी डालकर कवर कर लेंगे, ठीक है, और गलने तक पकाएंगे. या फिर प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी जब तक नहीं आवाज़ देती तब तक हम इसको पका लेंगे. सो आप सभी देखेंगे कि इस स्नैप में कोरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा. सो जैसे ही आपको दिखने में लगे कि अब आपका जो कोरमा है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी अलग अलग नज़र आ रहा है, सो अब आपका कोरमा हो गया तैयार. अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की जानिब बढ़ने की. सो स्टेप नंबर 3 में एक बड़े से बर्तन में हम ढेर सारा पानी ऐड कर लेंगे. पानी को गर्म होने देंगे. इसमें खड़े मसाले, पुदीना और नमक भी शामिल कर देंगे. सो जैसे ही पानी में उबाल आएगा सो अब बारी आएगी बासमती चावल डालने की. अब शामिल करेंगे बासमती चावल. चावल को हम 80% तक कुक होने देंगे, ठीक है. कोशिश करनी है कि हमने इसे बिल्कुल 80% तक कुक होने देना है और एक कनी बाकी हो, क्योंकि अगर हम अभी से ही चावलों को ज़्यादा कुक कर लेंगे सो चांसेस हैं कि वो बाद में ओवर कुक हो सकते हैं. सो ओवर कुक नहीं करना, हमने बस उसको बैलेंस रखना है. सो अब स्टेप नंबर 1 कोरमा हो गया तैयार एंड स्टेप नंबर 2 हमारे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हैं. सो अब बारी आती है स्टेप नंबर लास्ट की, यानी कि ये है हमारा फाइनल स्टेप, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, कोरमे को बर्तन के अंदर थोड़ा सा कोरमा डाल लेंगे, ठीक है. साथ ही साथ उसके ऊपर जो हमने चावल बॉईल किए थे 80% उन चावलों की एक लेयर बना देंगे, ठीक है. उसके ऊपर तली हुई प्याज, पुदीना और थोड़े गरम मसाले स्प्रिंकल कर देंगे. बाकी चावल की दूसरी एक लेयर बना देंगे. सो इस तरह से करके हम करेंगे लेयरिंग. ऊपर से हम किवरा वाटर, 2 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर शामिल कर देंगे. और अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी डिलिशियस टेम्पटिंग दिखे तो हम फूड कलर भी लास्ट में ऐड कर देंगे. कवर करने से 5 मिनट पहले फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हाई और 15 से 20 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे. सो अब हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी है और हमने इसे दम पर चढ़ा दिया. अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिरयानी या चावल इट्सेल्फ इट्स रियली इजी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है. सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है. आपको बताया था ना कि आज आवाज़ का थोड़ा सा मसला है, सो इस वजह से. सो हाँ जी, चावल बनाना इट्सेल्फ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप तमाम सारे इन्ग्रीडियंट्स को तो रेडी कर लेते हैं, आराम से पका लेते हैं, लेकिन जो पूरे आपके चावल होते हैं वो डिपेंड करते हैं दमा पे. अगर दम अच्छा नहीं लगा, प्रॉपरली नहीं लगा, तो चावल हो सकता है कि या तो ओवर कुक हो जाए या हो सकता है कि ठीक तरीके से कुक ना हो. सो दोनों ही सूरतों में थोड़ा सा मसला बन जाता है. सो इसी मसले से बचने के लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है जब कभी आप दमा लगाएं.

10 से 15 मिनट ढक कर रखने के बाद हमारी जो शाही मटन बिरयानी है वो अब हो चुकी है तैयार। और अभी से ही मुझे दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इसको खा लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिलिशियस और टेम्पटिंग लग रही है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? आई फील लाइक आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। सो लास्ट में ट्राई करिएगा हमारे आज की इस स्पाइस किचन की चटपटी सी रेसिपी को, और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो 0115710091 इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, तासुरात और ऐसी मजीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। आज की रेसिपी हो गई तैयार। वेल, जैसा कि है आज फ्राइडे, सो ये परफेक्ट डे है, परफेक्ट टाइमिंग है कि आज ही इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। सो लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई क्यूरी हो, सो वो भी आप सिंपली 0115710091 इस नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी सभी क्यूरीज को दूर किया जाए। वेल, इसी के साथ ही टीवा डायलॉग के ये जो सफ़र जिसको मैंने और आपने मिलकर स्टार्ट किया था, अब हुआ जा रहा है ख़त्म। शो ख़त्म हो रहा है लेकिन आपका दिन अभी बाकी है। सो कोशिश कीजिएगा कि आज जो सब मोटिवेशनल बातें हमने की, आप इनको माइंड में रखें और इनको अपनी अमली ज़िंदगी पर लागू करें। और जब लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको ना उम्मीदी महसूस हो, तो आप इन सभी बातों को अपने जहन में रख सकते हैं। सो इसी के साथ ही मुझे अपनी आरजे होस्ट ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त, क्योंकि अब शो का इख्तितामी वक्त आ चुका है। अलबत्ता दिल तो नहीं कर रहा कि जाया जाए, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी की गाड़ी कभी भी नहीं रुकती। सो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें शो को अलविदा करना पड़ेगा। सो जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि अगर लाइफ में आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान ना दें। और साथ ही साथ ये कि जैसा कि है आज जुम्मातुल मुबारक, एक खूबसूरत प्यारा दिन, यानी कि वो दिन जिस दिन में आप अपने आप को अपने गॉड के सबसे ज़्यादा करीब कर सकते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि आपको कोशिश करनी चाहिए, अपने असल मकसद की तरफ बढ़ें। आपका दुनिया में आने का क्या मकसद है? ज़िंदगी तो बस महज एक 4 दिन का धोखा है। असल ज़िंदगी तो वही है जहाँ हमने इस दुनिया के बाद जाना है और फिर हमेशा के लिए रहना है।

लिसनर्स, मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने से जुड़े उन सभी लोगों का ख्याल रखिए जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। वेल, जाते जाते ये एक खूबसूरत सा कलाम आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ और आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम, और फिर कलाम के उस पार आपको सुनने को मिलेगी एक और अदद खूबसूरत से आरजे की आवाज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही,

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
11: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर

मलकुना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
10: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
10: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
10: You are listening Islamic Transmission on फजा 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

आपने एक खूबसूरत नगमा सुना, ये पंजाब का लोक गीत कहा जाता है सम्मी। सम्मी पंजाब की एक रिवायत में एक ख़ास किस्म का नगमा है जो शादी ब्याह के मौके पे गाया जाता है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा आपका अपना रेडियो है। अब हम प्ले करेंगे आपकी नज़र बोल कफारा क्या होगा।

आप सुन रहे थे बोल कफारा क्या होगा, लेकिन कफारे से पहले जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है उनसे माफी तलब कीजिए। हो सकता है माफी मांगने से आपको कफारा अदा ना करना पड़े। चलते हैं एक ऐसी प्लेलिस्ट की तरफ जो 90s के गानों के साथ रिलेट करती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले 90s के सॉन्ग आपके लिए नजर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी वो भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

दोस्तों आज एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहूंगा कि हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ तरजीहात का होता है। अगर रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी किसी अच्छी किताब के लिए आप वक्फ करते हैं, या वालदैन के साथ बैठने के लिए, अपने बच्चों की बात सुनने के लिए निकाल लें, तो चंद महीनों बाद जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और मैं हूं आपका अपना दोस्त ज़फ़र हैदर। उम्मीद है गाना आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने किसी खास के नाम कोई खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं तो आप अभी हमें अपना पैगाम भेज दीजिए, हो सकता है अगली फरमाइश आप ही की हो। दोस्तों कभी गौर किया है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। पैसा अगर चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक दूसरा वाला लम्हा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने वक्त को उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी कदर करते हैं। अपने ख्वाबों पर ज़रूर खर्च कीजिए, क्योंकि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होते हैं।
1: साथ तेरा मंगता नहीं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ready to move.
1: It's all about the beats. Wow,
2: FM. Only Tune Super Hit Channel.
3: Fizz on 97.1 FM.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
6: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
5: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
6: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
5: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
6: थक गया सोनिए नी सुन के तेरे लारियां नू
5: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट फैमिली डिनर या मी टाइम मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: हेलो कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आए हाय हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
13: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा, रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
10: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
3: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
2: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
3: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
2: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
6: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
5: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
6: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
6: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
5: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
6: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
5: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.